दीवा न लगई पार ब्रह्म सरनाई जगद हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुरु पूरा भेटिया जनमन बनाई राम नाम है उखन दिया एक दिल दाई रहाओ राख लिए तन रखन हार सब जन पाई पौ नानक कृपा कोई प्रभ सहाय सलोक।

ऐसा गंधिर चलत मोहि समय जो दुख है सो इतके चरण समय चरण होए गुरु साखी जो तक प्रकट होए।

केसवत्र देसाय केसवत्र पेसाय केसवत्र राजाय केसवत्र साजाय केसवत्र दीनाय केसवत्र लीनाय केसवत्र जाहो केसवत्र पाहो केसवत्र देसाय केसवत्र पेसाय केसवत्र कालाय केसवत्र पालाय केसवत्र हंता केसवत्र गंता केसवत्र पेखी केसवत्र पेखी केसवत्र काजाय केसवत्र राजाय केसवत्र सोखाय केसवत्र भोखाय केसवत्र त्राणाय केसवत्र प्राणाय केसवत्र देसाय केसवत्र पेसाय केसवत्र मान्याय सदैवं प्रधान्याय केसवत्र जापय केसवत्र थापय केसवत्र पानय केसवत्र मानय केसवत्र इंद्राय केसवत्र चंद्राय केसर्वंक लीमय के परमंक हीमय के आकल लामय के साहिब कलामय के हुसनल वजू हैं तमामुर जू हैं हम एसल सलामय सलीकत मदामय गनीमुल सिकस्तय गरीबुल परस्तय बिलंदुल मकानय जमीनुल जमानय तमीजुल तुमामय रजुअल निदानय अरिकुल अजीमय अजायक यकीनय अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल फिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुयुक्त सुधा हैं सदैव स्वरूप हैं अभेदी अनूप हैं समस्तोपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तल सलाम हैं सदैवल काम

अस्य हैं, करुणाकर हैं, विश्वंभर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगदेश्वर हैं, ब्रह्मंडस हैं, काल खंडस हैं, पाते पर हैं, करुणाकर हैं, जपा जप हैं, थपा थप हैं, कृताकृत हैं, अमृतावृत हैं, अमृताव्रत हैं, करुणाकृत हैं, कृताकृत हैं, धरणीकृत हैं, अमितेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, कृताकृत हैं, अमृतावृत हैं, अजवाकृत हैं, अमृतावृत हैं, नरनायक हैं, खलकायक हैं, विश्वंभर हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सर्पायक हैं, पवभंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापण हैं, जप जापण हैं, कलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हर्ता हर हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्मवास हैं, जास के जस हैं,

श्री भगवान की पाए कृपा हो ते एक रति फिर एक रति के माते मतंग जरे जर संग रूप तंग सुरंग सवारे कूट तुरंग तुरंग से कूदत पौन के गौण को जात निवारे भारी कुजान के भूपली विद रावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहाँ भय भूपत अंत कौ नागे ही पाए पधारे जीत फिर सब दे दुसान को बाज धोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भोयक भगवान के भूपत कौन गणै नहीं जात बिचारे श्री पा श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ स्नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक विसेख है वेद पुराण देव पुराण जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जती जल धार सपै सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपा द्रंथ

से एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन बाबा फतेह सिंह जी, तन तन बाबा जोरावर सिंह जी, तन तन माता गुजर कौर जी, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी। शुकराना है आप जी का, आप जी ने कृपा की महाराज। अज का दिन भी नसीब होया है। दिन की आरंभता गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने कृपा की, पावन पुत्र निघी गोद विच बैठ के जिन्हें संगतां ने वाहिगुरु सिमरन के जाप किए हैं और घरां विच बैठ के वाहिगुरु सिमरन के जाप किए हैं, सब दियाँ हाजरियाँ दर ते प्रवान करनिया महाराज। सब दे घरां परिवारां बच्चों के अपना मेहरां भरिया हथ रखना, चढ़दियाँ कलां बख्शिश करनिया। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरु की सज नवाजी सत्संग जियो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार कृपा सदका सावण का महीना सुख सुखां नाल बतीत होया है। अज भादरों के महीने की संगरान का दिहाड़ा है, भादरों के महीने की आरंभता हो रही है। बारह महाबाणी का जो जाप करते हैं गुरु पातशाह महाराज जी ने बड़ी कृपा की है। सात संगत बारह महाबाणी का जाप एक यात्रा है, परमात्मा दे यात्रा यदि मंजिल की है, यदि मंजिल है ओ वाहेगुरु, ओ परमात्मा। ये यात्रा शुरू कितों होंदी है? ये यात्रा शुरू होंदी है जदों इंसान का जन्म होंदा है। हुण जन्म हो गया, इस संसार दे विच आ गया, हुण यात्रा शुरू होई। किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। हे मेरे वाहिगुरु, असी अपने किते हुए कर्मा करके, माड़े कर्मा करके ये हिरदा ये रूह तेरे नालों बिछड़ गई, कृपा कर दिओ। भई प्राप्त मानख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी वरी आ। हुण वारी मिल गई है उस गोबिंद नूं मिलन दा, समा मिल गया, मनुखा जन्म मिल गया।